0: The station with the best music.
1: It's East FM.
2: It's East FM.
3: Feel the power. Feel the bass. 102.7 FM.
4: कैनेडा सरकार जमानत अते सजा दे कानूना विच सख्ती ल्या रही है। हिंसक अते बार बार अपराध करन वालियां नू भाईचारे तो दूर रखन लई सिस्टम विच सुधार ता जो तुसी घर विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कैनेडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
0: FM 102.7 East FM.